0: 레토그나바테나 테릉글 예친디낭데 고브리그누근 삼디럭티라 카몽오미리 친나 싱킨제로고도 카린도 타르데 고브디시 요타나 타니 쿠니 우수 젬브르 리스나 시쿠누근 양킨도고테 카다시 파첩진텐디나 그소리친 데 영수니나 아 롱토 우수 자시몬스 스마 카탈로니 리슨 쳔보즈르 달리스나 싱킨 저탄게 탄클크 ये कोर्स ग्रेटा ओंचंग यंग दि न्यांग खन मंग गते गनिना यंग सु न्यांग खन ग थोनार जमरंग सु जोंनि खना खबर जोंई ता गलरत रिवाशा कुरिर छि खसारा कुर छि तंग मान्यो कुर तमो शा गज इनि ते रिवाशा कु गते गनिना यंग इ थातुंग कलम नि रा छि फानतना जिलुंग छि त सामस जिरि छि त सको जिरा ओन दे रिवात तो नु तना नबा सो ग लेस न गा शिकु नु गु तो पुर कि थिनि बुजुन जुग जो क्वाटन छि या तो देमो
1: Demo.
0: Demo.